लफ्जों के मारे लोगे सारे खारे खारे आजा मैं दिखाऊं हाथ तुमको भी दिल में तारे पहले ये जुनून था लेकिन अब ये कारोबारी कारोबारी मामलों में कोई ने दखल दे हम तो कड़े जैसे मुंह पे तू जरा संभल बे दो ही रस्ते हैं जिंदगी गुजारने के जिंदगी संवारने को तू लायक ही नहीं है चल अब तू उस रास्ते निकल बे हट बे अब करना है शाइन